0: Re long chen tang zha jin ding ji san kun tang dan kun san ji nan ba.
1: Der zhe ge guo chen nan ba tang dan mo nan ba. Da ta che zhe ge da long na yi xi tang cha chen mo ge ga tun tang zhuo jin ban dei na. Zong ren jiang zhou nian chen kang tang zhong gong se ku zong dang er dang se zhong yi ji zuo zhu ji wi. Se ba ga bu de mei wo jia dan hui ge dan xin zhan der ge nga wi tu min zhan der ge yin yi yin.
0: Rate of number, Takuni, Janaki, Lesser, Nigan Goshi, Tam Kri, Niga Totally, that Tangitanga, Tang Queen, Dander, Gorsum Zagundin, Janakano, Bazak dinner, Rela. The Natsam Deni, Janaka Sitanga, Tang Hui, Dancing, Dander, Gurum, and Yashik Juil.
1: Tandi, Dander, Gurum, Chatsang, and I'm Hongo, Long Tentang, Amdo, Yan Tinker, Ganton, and Yalam Tang. Gangjung, Melung Tawa, Jija, Nyantu, Jinni, Taitung, Shiji, Yobi, and Ambassy, Teeter, the Quarter, Gasisha.
0: Tangdi, Tam Queen, Dander, Dan Shi Shandam Banner, Sorgon, a gay, Hosin, Jill, Hosu, Serpatang, Gergen Shemu, Burnum Bean, Zapton Gergen, a Jassel, a Shake of Conger, Mugsel Tong, Lonsa Shokin, a Gana Jay Tabula.
1: Namsham, Murgh Hosin, Gergen Shemu, Shanti Homin, Zapton Gergen, Gansu Shanti, Mantak Gergen, Gansu Shanti, the Sejong Lord, Yutakang Shamjipa, a Gergen Shemu, Batu Pama Angela.
0: Tongku Satum Hobson Jia Tumrigan Barumba, Tongku Mamang Hobson Tumrigan Barumba, Shetzer, Jiangsu Gail Hobson, Tang Sorun, the Gail Hobson Yikir, Dan Shi Girgan, Shamjik Homin Zapton Girgan, Jakub Japuran Bia Damton Shombi, Jowly Yigir Tumrik Chekipa, again an Amji Loin Chang.
1: Tongu Wilpa, Shamjik Ternicha, Tongu Wilpa, Huaytin Kang, Woy Somni Kanga Turin Jomba, Skata Ribin Barumba, again a Hiru Tondu.
0: Sertun Shanshin of Garnzi Kalasirta Zung and Upsir Yelsi of Damshil Patterson, Hermantun Dumdipa, Ramshung Doshil of Shamsi, Shinsen Sopi Soso and Upsir Lagasum Lug.
1: Chenamba Pepper Lagasum and Amtaki Gasashil.
0: Rest of Namba, Tatina, Tatunga, Town Queen, Dandran Dala Sona, Josia, Nala Kimenda, Martaman, Kalka Torma, Disulka, Rangtung, Jardira, Norchik Yumel, Tihanshika Ingena, Shil Liga Junshira, Yamjir. Disuk chalg yoma la sukwa shug yung ajig dal tangi chanda ma namba ge karma ge gerel
1: re dinag chi terang ge randan de ngi sen gu som ju yi tomer dan shi ang ta ge tongo yang bam ran dan shi ang ta ge ni pa gen zeng ja ni ga ga ta ge tang pe ro re dina su ni ge chu dan shi ang ta ge tongo ra ni wan de ni ga terang ge kan ni ge ga lang zen de a gen leng ge ju
0: re te na terang ge dan shi ang ta ge tang pu tang dan shi ang ta ge ni wan ni ga Captain Devanugar, Jen Ingena, Attacker Nigger, George, Lipunga, Detunga, Galchi, Ranjinzino, Tandika Kurni Mara Kabdas Gekog, Jinni Sauzga Guta, Lipunga, Detunga, Galchi, Ranjin, Rendashipachi, Akuta, Re Yakuson Attack Sitirum, Takinga Katos on the Tandan Gusan Donashoka
2: Yari, Taina, Tatiran, Taki Tibson Ganyaman, the Seru Sera Dimpum Prisi, Del Land of Ganyaman, the Tabjeremo Dantan Tansgi. Tatirang ina semgo ngoma idali namkwa jenga thoma idali tatirang injina tatim jeni gingu idali shaturmani gi sti idali tangi khasum chara oma idali khakuk sara demni gi idali ta maksan tamo shana sal mesa khirav rati jamna hma mesa zkartani tangi tirang chali hisse kartamz gira oli chigze ka khaz gi zina tanga choni sona kana tam ga alom me ka khuna ruki melam me ka ta ya chungar go chung shi me ka kankara shaga chig me kara Tatirang engine Nangar Kapsua Pitamidali, Tisua, Pichari Dali, Tangi Tirang engine, Kapta Chari, Yelazi. Taina Tomer Tom Chesiris, Nangata Sangan, and Dilak and Dancing Arthur Tomuri. Taina Wilkawajana, Timritan, Chikaru Shua, Kanlon, Sersra, Tangi Tamshan, and Yevjikoni Shali Dali, Tajina Sankarani Jigi Dali, Tatirang Kerkachi Tongarno, Dokiramo Mahui, Tarjafi Sakartawa, Tonshik Markovalo. Da dukunda kan zina ta thomre na ta sangan dandar da muzi da sir jong ma jong sing mu idali chapa tam ga hasa idali o ya nga phasa phail da ne gina dan de ka likho ma idali o ya ta sangan dandar da muzi go rav jin ta hagi dali haga sir jin ta sigi dali o ya ta jin na ka mu ga chag hali ko mu gar je hali ta nir na ma bi ma na de du idali tam na jam chu chhar na din de idali da terang da na ha mang go chim kang chu go kar kar ka ta sangan de ok Chignan Jinan Densoni Sona Sojing of Zonji Yagam of Jig, something Gatona Hujai. Yaman of Tang Huirin Tang Champon of Jacob of Jiga, Sojin Omi Tomon of Kamgam of Jigno, the Quatana Muches are, Katana Tunches, I know, Dayam Shilmer Guran Semnayonari, Jemur Gui Chonginayonara. Yati Hanchen Injina Tatiran Kan of Tango Alon Yoni, Kunaruki Melon Yoni, 다 야총거고 총시원이 건거라 저가 지가요니 다녀게 공이 흠실고나 답게 공아 섬적고나 다녀 칼아이고나 다 칼루투고나 다토 커마친 건데 세마롱거 쇼려 머구니 다마 커만 품인 촐라 던치르스미 카그는 머구니 단담우게 인지 납시게 인지 나냐 냐친 망아 조랑친 망아 서거퍼테 인지 나 샨담 거거긴 나바탄 오야 다송게 인지 나 데이컨 고튼 나바 망아 다녀다 빈터 공이 카리 송게 젠터 돈이 좀이 다테랑 산즘게 냐마토노 데르치 커카와 송노 덴손이 소나 당어 파사파이 거즙지탄 산년 레인다 단다나요노 사찬 도르튼 도르멀이 다리 냐마카르 오르간트기 다리 다르마하르 서레이 다리 소예레요레이 다리 다다나 인지나 다테랑 인지나 하멍거 쳔컨라 럭커커타 송컨요 근디영 러랑게 셈거 인지나 거즙지즈그란 산년즈게 논다영 니키뇽아 공아 소마라 다스테뇽아 텐식 서완드그므르구게 딜라카닝이 테랑 카츠기종 세르흐서레이 다리 달라츠기종 카루터레이 다리 오체남바 페노 인지나 데이 카양 카나보크요 다치피 몬덴 셈나셰게요스 야티 한치네 인지나타 오야 카나프탐고 아노요니 타코나 루키 멜로요니 오얀다무게 인지나타 흠샤클득득나요니 스타르지크르지그더잠나요니 오얀잔식 바지 달리 인지나야타송 인지나 사찬도르튼도르므 냠바카르도르간테케 오야 주그야르므르케 인지나타 카나프탐요나무가 코나키요나무가 오야 캬프치가 달리 달리 캠치그니 달리 달리 아단 투크치그니 히츠오기 데르투크치그니 시니 ओया फैंसम के नेमा शंगई देर्ची ककावा दानी मर्ग सोजिंग का तां खे रिंतों जांबुन द न्याम ग माबजगा ओया दिला कांदने इंजि नखचे मरकाला दई खतम से गोनु साचिन खवा लंग एवंग दिन गोनु ओया दतो कुंदेन सोनी सोना इंजि नायंग सोजिंग के सोनी इंजि नायंग न्याम बा हार सोरी मान्यम कॉम्फर्ट डांसिक पाना बायंग ता संग इंजि ना ओया छजरे जिना ता अरु ने यारन जो कसलो ने ररुवा लिंग जलो ने ओया दमुग इंजि ना ता थंकरना मा पर कसगिरा थनक थंगा बाब के देरे नो ओयांदयांग इंजिना माफसि करकाचा खरे एकस मारदंग रमंबर एकस ओया चनाबा इंजिना यंग पासा पाइंदे यों दाली तासंग इंजिना कार्तंग दिलाकानी ओया उलमर करकाची जर्ते तांखें द इंजिना चिकशा नुंदे ओयांदय इंजिना यंग सिग क्वाटना नुचे सारा कटना तुनचे सारेस या ती हांचने इंजिना ता अचो इंजिना कफजा ओ ना हुइज गो के ना सानग थाना लमज गो के ताचज रेजिना तेरंग चीजा करका कग जगी समारा बातिम गतोनी तांगी तेरंग खाना चगी दाली लगनादनी दाली ओया छजग्रेजिना लिपों देतंगर कुरंदनी ओया तमेला योनज काहली दाली सिरमना योनज गजमा जगी दाली ओया अंधेला कने इंजिना ता मार्जिक जोंरजे दाली कामनी कपाई दाली ओया तेरम इंजिना तांग इंजिना कावदा चारे फशलज दाफचर नाफशाला जिना गान छोनी सोना शेर चंग चंग गरीला चंग चंग नाफ चंग चंग गनाम शेर चंग चंग ता नेफशाग ने करग मामन्यों ने रंग शार तंग ओ मामन्यों ने फचरना चमगजा सोग तामल तांदो आशोंग गर्तामल ओंदा मुज गरीतारा तातेरंग मेम गतो नि जोंगो मलेंग गन्यों सुशाली गदांगो मलेंग सेरसरा तातेरंग खुयरंग तुगालंग इ तबखारजना कोनी दाली तांग इरंग लिवा मादाब जिलान दाबराय रंग समट ग ख्याल ग कोराय ओया तेरंग इ जिना दीपंग ते थंग ग शुगन दने इ जिना ओया ता इ जिना ने छक्वा छारि ग खाबदा से गोना ताफचर क दीपंग दे थंग जिना ता फ्या का छिन नंग गंग छिन जगे नुर जेरन छिन नो बरसा छिन जगे नु ओया दा छगे नु जिना ताफचर क इ जिना रोआ म सतंग सेन सोनी सोना ओया लिपंग देतंगला कांदनी इंजिना ओया हुयरा तुगाल तुखारजना कोनी दाली ओया दिला कने इंजिना रानी ने गुरसाम ते इंजिना ता लिपंग देतंग शुगन देता ओया रदगता गिना देन सोनी सोना इंजिना ता छेसा ने इंजिना मर ता छोंसा ने छमचंग रे रे कर देचटा ओया रे रे ग मगी करता सा मुक्वा गंजन सा ओया दे शुगन देता दोचारंग चिकन छिमा लमो तख चिकर दुक्वा सेरसरा छजग्रेजिना ओ लिपंग दे थंग गशुंग दे इंजिना गाचिन गाचिन जगासिना ओ नदा दो कोंदे छोने सोना ता इंजिना फिग आ तांग तेर मस्काफ सो अपि काचारा ति सो अपि चारवा रिटारा दशा काचिन नंग गाचिन जेरे छन नो बरसाचिन ये नोंदे इंजिना या माफी कर काचा करे तमार दंग रम बरे ने जिम छन दरे ता लिपंग दे थंग ज मायोना ओया रामजिन निगा इंजिना ता छजग्रेजिना देश चीज गमे नोंदा दो कोंदे लाकाने ताफचर ना छजरेजिना ने का टक्कर देवा ग नंदे ने खुयरा थवा लंग थवखारजना कोनी दादी काचारे शाना छचरना जिना टक्कर देवा जिना आमो योसा जगरी करस्ता उन जोसा जगरी लगलंग ना दोरि गस्ता मंदा सा तम शाना हावजों वे मंदा सा ओ यान तम ओरे चारा तसी माफसी मे कतग जिना दी ना दे जिना तांगी जिना हर खोरी नंग जावी सन खोरी सी ना ओ या ता

या तो कुना बात है ना तारीख लेसन दे शिक्षिक रेवा शल सांकुंग के टोपो यो ना तारों रेवा खचिक शाचुग कोरकुतो के कोरकुतां जेंचो का चीग तना तेरंग लेसन दे के सामने कोटिगु नो लवार के जंतर कलंग भी खबशिक लातो पास गुनु गुनु दयिन यंग निरकुप से लेसन था तुम खंडे शिंकिंग के टोपो में ना आती सामने चेचक सेन्यंत लवार के जंतर के लरकल न्यामुंद गुजुयल